7 लाख हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार थे। ये एक उम्दा किस्म की तेज रफ्तार ऊँटनी थी, ताहम उस वक्त उसके ऊपर जो कजावा बधा हुआ था उसकी कीमत 4 दिरहम से ज्यादा न थी, गोया जरूरत की हद तक आला मियार। लेकिन जहाँ जरूरत की हद खत्म हो जाए वहाँ सिर्फ सादगी। आप 4 जिलहिज्जा को मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचने के बाद सबसे पहले आप हरम में दाखिल हुए और आपने काबे का तवाफ किया और ये कुरान दुआ की कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमको आग के अजाब से बचा। इंसान एक लम्हा भी भलाई और खैर से महरूम होकर जिंदगी नहीं गुजार सकता है, इसलिए हर औरत और हर मर्द को चाहिए कि वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए खैर का तालिब बना रहे और इसके लिए दुआ करे। 8 जिलहिज्जा को आप अपने तमाम असाब के साथ मीना गए। रवानगी के वक्त कोई तवाफ नहीं किया। उस दिन जुहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाजें आपने मीना में पढ़ी और रात को यहीं कयाम किया। सुबह 9 जिलहिज्जा को सूरज निकलने के बाद आप अरफात की तरफ रवाना हुए। आप नमरा वादी अदना के एक खेमे में उतरे। सहाबा में से कोई लब्बैक पुकारता था और कोई तकबीर कहता था। काबिले गौर बात यह है कि कोई एक दूसरे पर एतराज नहीं करता था। इसमें यह सबक है कि शरीयत में अगर किसी मौके पर एक से ज्यादा चीजों के दरमियान किसी एक को इख्तियार करने की इजाजत हो तो उसमें से कोई भी चीज इख्तियार की जा सकती है। इस इख्तियारी इंतखाब यानी ऑप्शनल चॉइस को अफजल और गैर अफजल के नाम पर नजा का जरिया नहीं बनना चाहिए। जब आप अरफा से मुजदलफा की तरफ रवाना हुए आपके साथ उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके पीछे बैठे हुए थे और आप रास्ते भर तलबिया करते रहे। मुजदलफा पहुंचने तक ये सिलसिला जारी रहा। आपने देखा कि रास्ते में कुछ लोग तेज चल रहे हैं तो आपने ऐसा करने से मना किया। आपने कहा, लोगों सुकून और इत्मीनान के साथ चलो, दौड़ना कोई सवाब की बात नहीं। इसी तरह आप जिंदगी के तमाम मामलात में अदम उजलत और आसानी को इख्तियार करने की तालीम दिया करते थे। हजरत उसामा बिन शुरैक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में थे तो लोग आपके पास सवाल पूछने के लिए आते थे। कोई शख्स कहता कि ऐ खुदा के रसूल, मैंने तवाफ से पहले सही कर ली। कोई कहता कि मैंने रमी जमार से पहले हल्क करा लिया। किसी ने कहा कि मैंने पहले कुर्बानी की और उसके बाद रमी किया। इसी तरह मुख्तलिफ लोग मसाइल पूछते रहे। आप इस किस्म के सवालात के जवाब में फरमाते, ला हरजा, यानी कोई नुकसान की बात नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं। एक और रिवायत में है कि आपने कहा, नुकसान की बात तो यह है कि कोई आदमी अपने भाई को बेइज्जत करे, ऐसा ही शख्स जालिम है, उसी ने घाटे वाला काम किया और वही हलाक हुआ। ये सिर्फ हज का मामला नहीं है बल्कि यही सारे दीन की स्पिरिट है। एक मरतबा चंद आराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या फुला काम करने में मेरे लिए कोई नुकसान की बात है, फुला काम को करने में कोई नुकसान है? आपने उनसे कहा, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने मुश्किल को दूर कर दिया है सिवाय ये कि कोई इंसान अपने भाई की बेइज्जती करे तो यही नुकसान की बात है। इसलिए एक इंसान को अपने भाई के खिलाफ किसी भी इकदाम से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। हजरतुल विदा का खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अहम तरीन तकरीर है। आपने खुतबा 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में दिया था। हजरतुल विदा गोया जमाने नबूवत का सबसे बड़ा इस्लामी इज्तिमा था। इस मौके पर तकरीबन 1.25 लाख असाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा थे। उसमें आपने उन तमाम बातों का आखिरी तौर पर ऐलान कर दिया जिसके लिए आप मबूस किए गए थे। इस खुतबे में आपने जिन बातों का ऐलान फरमाया उनमें से यह भी था, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे के लिए इसी तरह कयामत तक के लिए काबिल-ए-ताज़ीम हैं जिस तरह तुम्हारा ये दिन